0: सेवक इतने कमल जाट कर कीर्तन करते हैं बाणी पढ़ने आप जी चाकते हैं कुलों बेंत.
1: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

खालसा प्रगटियो परमात्म की मौज, खालसा प्रगटियो परमात्म की मौज। ठंड पयो मैं जोर करे बचन कहां सिर न्याय,

जब लवली भाग मिलार तुझे तब नौ भरते फिरते बहुत आयो कल घोर समुद्र में मूड दुखे कब हूं मिट है नीरे पछतायो तत् विचार यह मथुरा जगतारण को अवतार बनायो जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ धन गुरु नानक पातशाह धन गुरु अर्जुन देव पातशाह जी का पवित्र पावन नाम रसना से लिया है नेड़े कोई संकट भी आएगा ते चौरासी लख जूर तू बच जाएगा तो प्यार नाल सारे आखो धन गुरु अर्जुन देव गंगा जी असी गुरु की संगतां दे सेवादार पातशाह हुक्म करो हलो कहने लगे गंगा जी फिर कड़ा प्रसाद ही देख पिया कड़ा प्रसाद ही देख उस आटे भी नहीं बना अज गुरु की संगतां की सेवा करनी है अपने हथी पहला चक्की पी

दैवी गुणों वाली मां जगत माता माता गंगा जी आज गुरु जी और संतान वास्ते आप चक्री थी आटा तैयार किया फिर साहबा ने अपने हथी कड़ा प्रसाद भी अमृत देख तैयार सोने थाल विच पाई उत्ते चिट्टा रुमाल पाया माता गंगा जी कह लगे पातशाह किसे सिख रूप बनाइए हजूर कह लगे नहीं गंगा जी असी आप ही अपने सिर पे तो बने पातशाह जी कड़ा प्रसाद भी देख अपने पवित्र पावन शीश से रख चादर भी हुक्म मारी तुरन लगे माता गंगा जी कह लगे पातशाह मैनू की हुक्म है हजूर कह लगे गंगा जी जे संतां की सेवा करनी तुसी भी ठंडे जल की गागर कर जिथे संगत नूं भुख लगी उसे प्यास तो मात गंगा जी ने सिर दे उत्ते गागर जल की रख ली हजूर तुरन लगे कह लगे गंगा जी पखा भी नाल लै लो गर्मी बड़ी तुरिया जाते अज पंजवा गुरु नानक सुरती नाम सारे करो दर्शन से प्यार नाल की रखो तंदू रात दस गुरु तुरिया जाता है सिखा ने दर्शन करो नदी तो रोज तुरदी है समुद्र को मिलने वास्ते पर समुद्र कदे भी मिलता समुद्र कदे भी नहीं आता पर तक लो प्यारी सार सिंह नदी रूप सिखी जे गुरु के दर्शनों तुर पैंदी है जे कोई रुकावट पै जाती है तो गुरु आप ना उतर दे अद्धी रात दस गंगा जी सुनो ना मेरी सिखां दे प्यार वाली आवाज भावें उन्होंने प्रशादा नहीं दे ठंडा जल किसी ने नहीं पिलाया पर फिर भी गुरु की यह संख्या प्यार भी किस तरह अरदास कर गंगा जी सुनो साहबा ने बरसित की थी माता गंगा जी कन्ना विच प्यार की आवाज आ रही है केड़ी सारी संत रात का समय प्यार जी है ते अरदास कर रही है मेरे

से प्यार दीजिए साल कितनी सुंदर है मेरे दाता जी, फिल्म करे चातक की जान रेखा न सुने हाथ न आवे बिन दर्शन संत प्यारे जियो हमको लीजिए गोद घुमाई गुरु दर्शन मैं गंगा जी कहते हैं प्यार वाले तेरे सिख हाँ गंगा जी आओ चल के छेती करते अगे गुरु की संगत कीर्तन करके ते हम आराम कर रही सब नहीं पहुंचे जथेदार बेनती की जथेदार जी धन गुरु नानक दिया संतों वास्ते कड़ा प्रशादी देंगे जथेदार जी उठ के बैठ के सारी संगत नु साल नार कीता प्यारी सार संगत उठो कोई गुरसिख आया है गुरु ने उन्हें मन नु प्रेरिया है लंगर का प्रबंध नहीं हो सकिया कड़ा प्रसाद ही दे जा रही है उठो पहले अरदास करो सिख नु जो भी गुरु वालों दास मिलती है ना पहला अरदास करो ये अरदास करे तो वो गुरु की बख्शिश बन जाती क्योंकि गुरु की मोहर लग जाती है कार्य प्रसादा तैयार हो अरदास करो गुरु का लंगर बन जाए क्योंकि अरदास क्यों हुई कोई कार्य है गुरु की कोई वस्तु मिली चंगी कार मिली है पहला गुरु की अच्छा तेरी चंगा कार मिले जय प्रसाद बसाए सुख मंदिर किसे प्यारे सारी संगत सावधान जथेदार ने गल पला पा के अरदास की ऐ धन गुरु नानक पातशाह तेरा प्रेमी सिकड़ा प्रसाद ही देख लेके आया है सिख नु नाम दान बख्शी सिख नु सिखी दान बख्शी अजू कह लगे गंगा जी सेवा का फल मिल गया जी अज असी प्रेमी सिख बन गए गंगा का सेवा का फल अरदास करो जी साहबा ने अपने हथे सारी संगत को कड़ा प्रसाद देकर पेश कराया गंगा जी हम जल भी चल साहबा के सोहने हथा जिन्हें जिन्हें प्रसाद लिया उन्हें ही जपया श्रीवान जल छकाया जूठे भांडे कौन मांज रहा है माता गंगा जी वो हथ पवित्र जो गुरु घर की सेवा जो गुरु घर की सेवा तू मांजे हैं भाई साहब जी की फिर सेवा बिन हथ पैर होर मेहफल कर सारे जल सकिया भुख भी दूर से प्यास भी दूर हूं संगत आराम कर रही है धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी लैके पक्का सारी संगत को पक्का करें पक्का कर दे प्यार क्या कि भरते हैं।

कुर्बान चाहिए तो मुझसे खा दे तू ही सदगुरु आप समझे सिर के चौदह रसड़े प्यारे कल तिना के पास तोड़ तिना की से मिले जी कहो नानक की बाबा पिताजी पहुंच गए जाके साहबा के उसको जोड़ा ले लिया रो के क्या नीचा रूज करने वाले पत्ता नु पावन करने वाले तू ही नहीं कॉपी अगले यार सोने सुख तू ही छोड़ दी पाचार इतने बैठे हो जोड़े पे चार दे हजूर कह लगे बाबा तो इन्हें नेत्रा नाल धन गुरु नानक के दर्शन की तीर तरह नीज ला के वेखे जोड़ा किता है बाबे ने नीज ला के तकिया सचमुच जो जोड़ा मेरे धन गुरु नानक मेरी संगत हर प्रभु गुरु कितने नेत्रा चाहे हृदय पर बिखा प्यारी साथ गुरु की बख्शिश द्वारा जो गुरु नानक ने पातशाह पर आप इतने सो संगत वाल वेखो इस वे संगत ने तकिया उपा मार के रही जाती कहनी पुलकी जेदे को गुनाह पुछाने सन और जोड़िया जेदे को जी दान लेना सी की बाबे ने कहा पातशाह करो कृपा हजूर उठे श्री हरिमंदर साहब जी के अंदर आके विराजमान हो गए हरिमंदर साहब जी का ध्यान रखे पैरों सतनाम संगत दी नजर नहीं त्रप्र वाजू जा रहे गुरु ने कोशिश की थी क्या प्यारी सा संगत रोवो न पातशाह एडा वड्डा पाप कर बैठे हजूर कह लगे नहीं पातशाह तुम इतनी खेचना

ये पूरा गुरु ही खोल सके, दर्शन दीजिए खोल किवार, ओ किवार मालिक खोल, जिसे रे बख्शिश कर। इसे महापुरुष ने लिखे है, मुर्शिद ने जद बुआ लाया, मुर्शिद लो, मुर्शिद ने जद बुआ लाया, अंदर जाती पाई, हर पासे गुरु नानक बैठा, निरंकार सब लाई, चरना विच पदम है सोना, जो दुनिया नू ठारे, चन सूरज इथे पानी भर दे, मानक मोती सारे। ला दिता हुआ सज्जन फाक का ला दिता सी, भूमि डाकू का ला दिता। आओ प्यारे हो मेरे बच्चे, थोड़ा भी बुआ ला, सारी समय थके हुए हजूर ने अमे दृष्टि सारे वाल थकिया, बख्शिश की नहीं देखिया, जपो सतनाम, नाम भी बख्शिश, नाम भी बख्शिश द्वारा, ओ नाम रचना द्वारा हिरदे ते जाके वसिया। प्यारी सार संगत, नाम का धक्का जिसे ने वजह भूआ फुर गया, अंदर से बाहर नाम ही दिसन लग गया, आखो तेरी हजूर कह लगे हूं पढ़ो, संगत ने फिर पढ़िया, खोल कपट गोल दे लिया, नानक हर हर शायदी तो फिर हजूर कह लगे, जो गुरु के प्यार सिख जुड़ता है, गुरु उसके सहमत करता है, बख्श गुरु ने वो बख्शिश संगत से की, थोड़े उत्ते भी की है, क्योंकि जो संगत को लैन वास्ते पंजवां गुरु नानक आप गया है, थानू भी गुरु नहीं लिया, एक दिन नहीं कि पाठा वाले हो प्यारी संगत, एक वीक पूरा माताओं भैणा बच्चिया गुरु बजुर्ग वीर अधी नागा नहीं पाए, एक नागा भी कीर्तन च नहीं पाया, बाबा जी बचन करते सर जेड़ा गुरु के दर्शन च नागा नहीं पाता, गुरु मेरा जनाजा नहीं पाता, यह तो सिद्धि है। सारी संगत ने मत्था टेकिया, पातशाह इन्हें रहमत हजूर कह लगे, हाँ सात संगत यह प्यार गुरु कार्य यह बख्शिश है, चल सर्व गुरु एक पैंदा जाए, चल सदगुरु और पैंदा, भाई गुरदास जी के कोल सिख ने फिर बेनती कर, भाई साहब यह अवस्था कहड़ी है, जो गुरु ने इन्हों बख्शी है, हजू भाई साहब जी कह लगे सहज अवस्था, सहज अवस्था ज्ञान को कह, इन्हों उधर बाहर गुरु का चानना पे, कह लगा भाई साहब अलह दसो सहज अवस्था गुरु की कृपा द्वारा आती है, होर भी कोई साधन है, ऐसा जी कह लगे छह पौड़िया सहज अवस्था, जी सहज अवस्था ज्ञान है वोदिया छह क्लासा छह लैसन के, तो भाई साहब जी के गुरुदे गुरमत रीते गरीबी पहली पहली क्लास, दुनिया के पदार्थ मिले हैं तो मन के अंदर निम गरीबी का मतलब निमत है, नहीं लीरा पा लो कपड़े मैले पा लो, गरीबी का मतलब है निमत, दुनिया के पदार्थ मिले हैं, सिख अरदास कर दिया तू जाके अरदास कुमारी जी, और पिंड सब तेरा कौ नानक सब तेरी वडियाई कोई, हाँ तो कोल कुमाया गुरमतरी ने गरीबी है, दूजी पौड़ी कहड़ी है पर नारी देने नजारा, इतना उच्चा करैक्टर सिख लू पर धन पान तुम त्रिया परमात हो गए, सिख धर्म कितना पवित्र जीव, एक नारी जती है जती सती रहता है गुरु का, पर नारी दे नेड़ ना जाए, तीजी पौड़ी पर धर दे नू हाथ ना ला, सिख वास्ते मिट्टी दी, चौथी पौड़ी पर निंदा सुन आप बता, किसी भी निंदा ना करनी है ना सुन, एक मेरी नानक सर बाबा जी कह लगे संगत रूप में निंदा ना करिया कर, एक उठ के प्रेम ही खड़ा हो गया, बाबा जी साडा तो सुभाव बन गया निंदा करनी, जेदे कोलो मतलब हल हो जाए वो उसको कर लग जाते, हमें जानते हुए भी आदमी चंगा नहीं पर स्वार्थ

अंतर आत्मा दे नाल हुण मैं परमात्मा दे पिछे इंज लग पईआं जिवें कोई ढोल वजा के निशान लै के उसके मगर पैंदे। इसे तरह मैं उस निरंकार दे पिछे हुण उहदे नाल मिल पईआं। मिलो गोपाल निशान बजाई, मैं दुनिया दी उस्तत निंदा तो उठ के दुनिया दी परवाह ना कर दी होई उसदे मगर लग पईआं। हुण मैनू ओ दाता मिल पिया, मैनू किसे दी परवाह नहीं। भगत जी कहंदे ने

प्यारे गुरुदेव जी, सच्चे पातशाह सतगुरु साहेब श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी के चरण कमलों के नमस्कार। हजूर बाबा जी अपने इस अमृतमय वचन दे विच जो विचार पेश कर रहे हैं, बख्शिश कर रहे हैं, वो साढ़े प्रीवियस कीर्तना की जो लड़ी है उसके नाल संबंधित है। इस शब्द दे विच आख्या है कि क्या तुद कर्म कमाया है, कि तू की आके कीता है। इसका भाव कि कुछ करन दे वास्ते ये शरीर प्राप्त होया सी, इसका भाव देर वाज वेरी इंपॉर्टेंट मिशन इन लाइफ टू बी कंप्लीटेड, देर वार सम वेरी इंपॉर्टेंट वर्क टू बी डन, ए जर्नी टू बी कंप्लीटेड, ए ड्यूटी टू बी फुलफिल्ड। कहते हैं हूं तक तू दस उस संबंध दे विच तू कुछ कीता है, की कीता है, ये शरीरा मेरिया इस जग में आए के इस जगत दे विच आके क्या तुद कर्म कमाया, की कर्म तू कमाया है, की कीता है। और कल का जो कीर्तन सी उस शब्द दे विच महाराज जी ने आख्या सी अंधले क्या पाया जग आए, जगत दे विच आके तू की पाया है। विचार इक्को ही है। अज तीसरे जामे च गुरु नानक देव जी आख रहे हैं कि तू की काम किया है भाई। गुरु नानक साहब कल दे शब्द दे विच फरमा रहे सन कि अंधले क्या पाया जागा है, तेनू शरीर मिलिया सी उस शरीर दे नाल तू की पाया है, की अचीव किया है। देखते हैं कि यह शरीर तेनू दिता सी इस दे नाल तू कुछ खास पाना सी, तू कोई कम करना सी, तू कुछ लाहा खटना सी, जिस दे वास्ते ए इंस्ट्रूमेंट दिता गया सी। पर कहते हैं ए इंस्ट्रूमेंट ही तू बिगाड़ लिया है, भूडी चाल इसकी चाल खराब हो गई है, सुनी तरह तुरदा ही नहीं है, क्योंकि एनर्जी सारी दी सारी ओहो गलत

इन संग लाग रतन जन्म गवाया। दिस इज व्हाट वी हैव डन, ऐसी कीता है। स्वार्थ सेंसुअल प्लेजर्स बाद लड़ाई झगड़ा, माए बाप तूत हित प्राता, कहते हैं किसी ही बात का हाथ किसी ही पे सगले लर लर मुआ, बाद बाद विवाद, हरेक दे जीवन च बाद विवाद है, हरेक दे जीवन च बाद विवाद है, किसे दी किसे नाल नहीं बनती, किसे दी किसे नाल नहीं बनती, किसे दी पुत्र नाल नहीं बनती, किसे दी धी नाल नहीं बनती, किसे दी सहुरे नाल नहीं बनती, किसे दी सस नाल नहीं बनती, किसे दी पति नाल नहीं बनती, किसे दी पत्नी नाल नहीं बनती, किसे दी किसे नाल नहीं बनती। बाद साडे जीवन च बाद बहुत, झगड़ा बहुत, माए बाप पूत हित प्राता, उन कर कर मिलो दुआ, किसी ही वाद काट किसी ही पै सगले लर लर मूह, किसे दे थोड़ा जा काट किसे दे थोड़ा जा वद, सारे केंदे लड़ लड़ के मर रहे हन। इस चीज च ए रतन जन्म जड़ा गवाया गया, मिलिया किसी होर कारज दे वास्ते। स्वाद बाद ईरख, फिर ईरखा ईरखा, मद माया अते माया दे नशे दे विच, मद दे विच, स्वाद बाद ईरख मद माया, इन संग लाग रतन जन्म गवाया। इन्हां चीजां दे नाल लग के रतन जन्म गवा दिता, तेनू इस वास्ते दिता सी, तेनू इस वास्ते ए प्राप्त होया सी, प्राप्त इस करके होया सी कि भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया। यही तेरा एक मौका सी गोविंद नू मिलन दा, गोविंद नू मिलन दा, उस नू मिलन दी ये जो वारी सी ये तू एना चीजां दे विच ही चुकाती है, एना चीजां दे विच ही वेस्ट करती है। तो फिर महापुरुष ताड़ना नाल भी आखदे हन के अंधले क्या पाया जागाए, कहंदे हन ए शरीरा मेरिया इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाया, तू की कम कीता है। बाणी च फरमाया है कि असी किस तरह अपना जीवन गवाने, ए तेतो हिसाब तेतो ए सवाल ए तेतो लेखा पुछया जाना है। कहंदे हन

सो प्रकरण आरंभ किया से अकाल पुरख वाहिगुरु ने सानू शरीर दिता है ते इस शरीर का कोई खास मिशन है ना ते सानू शरीर दे मुतलक ही पता है कि एक ही वस्तु है ते ना ही सानू मिशन दे मुतलक पता है कि मिशन की है। तो उस दे वास्ते दास ने चुनिया सी कि आओ पहला गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे विचों असी शरीर दे मुतलक इनफॉरमेशन जो सानू दित्ती गई है ओ सरवण करिए उसनु हासिल करिए ओ सुनिए कि ए वस्तु की है शरीर वस्तु की है। तो दास ने आख्या सी कि उस दे लई महाराज जी तो 13 नुक्ते 13 पॉइंट्स जो हन ओ मिलते हैं जिथे सानू यह दस्या जाता है कि शरीर की है। तो जो मैं कह चुका मैं एक दफा फिर उन्होंने रिपीट करता हाँ। नंबर एक, शरीर दुर्लभ वस्तु है, दुर्लभ, जिहड़ी ना असी बना सकते हाँ ना असी खरीद सकते हाँ, यह सिर्फ अकाल पुरख की कृपा दे नाल प्राप्त होंदी है, इस उत्ते किसी का जोर नहीं है। यह दुर्लभ चीज है, दुर्लभ चीज वह होंगी जिसकी कोई कीमत ही ना पा सके, दुर्लभ वस्तु है साढ़े सबना दे पास। और दुर्लभ वस्तु हुंदिया होया असी अपने आप नू बड़े सैड, बड़े डिप्रेस्ड, बड़े मायूस, जिदा साढ़े पास कुछ भी नहीं है इस तरह फील करते रहने, हालांकि साढ़े पास एक दुर्लभ वस्तु है जिहड़ा कि 84 लाख जून नू भी चांस उस नहीं, नहीं मिलता जिसका वह साढ़े पास है, उसकी असी वैल्यू नहीं करते, सानू उसकी कदर कीमत का ही नहीं पता। पहली गल बाबा जी समझाते हैं कि शरीर दुर्लभ है, तुसी महान अमीर हो क्योंकि इस तो वध के जो कीमती शह होर कोई नहीं है। दूसरा नुक्ता अर्ज किया सी कि ए रब दी कामणी है, रब दी औरत है, रब दी पत्नी है। काया कामण अत सवाल्यो फिर वसे जिस नाले, फिर सच्चे ते सदा सुहागण गुरु का शब्द संभाले। ए सच्चे पिर दे अंदर होण दे नाल ए सुहागण है, पर इस सुहागण नूं जे पिर तों वाहिगुरु तों दूर लै जाओगे, दुनिया दे विच जाके इस नूं गवा दोगे, स्वाद बाद ईरख मद माया दे विच इस नूं डोब दोगे, ये कुमला जाएगी, क्योंकि पिर तों दूर लै जाओ पत्नी नूं तो वह कुमला जाती, उदास हो जाती, वह मर जाएगी। इस शरीर नूं वाहिगुरु की संगत च रखो, साधु संगत च रखो, गुरबाणी की संगत दे विच रखो, तो यह शरीर जो है वह हरिया भरिया होएगा, यह मौलेगा, यह खिलेगा। इसनु अकाल पुरख वाहिगुरु तो दूर ले जाओ, वो इसकी जिंद जान है, ये मायूस हो जाएगा, मायूस हो जाएगा। ये रब दी कामणी है, इसनु रब दे नेड़े रखो, इसनु उस तो विछोड़ो ना। तीसरा नुक्ता रखिया सी, ये मंदिर है, काया महल मंदिर घर हर का, जिसमें राखी जोत अपार। जिस तरह किसे मंदिर दे नाल ट्रीट करते हो उसे तरह इस दे नाल ट्रीट करो। मंदिर अंदर गाली नहीं दिती जा सकती, इस मंदिर दे नाल भी गाली नहीं दिती जा सकती। जो वस्तुआं इस मंदिर च नहीं लियांदियां जा सकदियां, वह वस्तुआं इस मंदिर च भी नहीं पाईयां जा सकदियां। इस मंदिर दा सत्र तिरस्कार नहीं किया जा सकता, निरादरी नहीं की जा सकती, इस मंदिर नू भी अब्यूज नहीं किया जा सकता, इस दे लई भी डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होया जा सकता। अगला नुक्ता सी, जो सारे ब्रह्मंड दे विच है, सारे यूनिवर्स दे विच है, जो कुदरत दी कला अकल कला भरपूर रहे।

शरीर सरोवर भीतर है, शरीर सरोवर दे अंदर। कल दे कीर्तन च असीं विचारिया सी ना कि महाराज जी वो जिहड़ी वस्तु पानी है वह है कित्थे, वो कित्थे है? कहिंदे हन अंतर तेरे निधान है तू बाहर वस्त ना पाल। वो निधान, वो खजाना, वो दौलत, वो बादशाहत कहिंदे तेरे अंदर है। अज महाराज सरोवर की सिमली दे के कह रहे हैं कि शरीर सरोवर भीतरे, शरीर एक सरोवर है जिस दे अंदर की है आच्छा है, बहुत कमाल है, बहुत खूबसूरत आच्छा है। कमल अनूप, अनूप का मतलब है जिसकी कोई मिसाल ही ना दिती जा सकती, अति सुंदर, यूनिक, अनपैरल्ड। कहिंदे एक कमल है जो इस शरीर रूपी सरोवर दे अंदर है। सानू पता है तो सानू पता ही नहीं साड़ा शरीर की है, इस दे विच की है। शरीर सरोवर दे अंदर कहिंदे एक ऐसा खूबसूरत कमल है, एक कमल फुलां दे नाल भरिया पिया है, अते इतने वो खूबसूरत हैं कि उन्हां दी होर कोई मिसाल नहीं मिलती। अच्छा महाराज होर की है? कहिंदे परम जोत, ओ जोत जड़ी तमाम जीवां दे विच है, सब मैं जोत, जोत है सोए तिस दे चानन, सब मैं चानन होए, परम जोत, डिवाइन लाइट, सुप्रीम लाइट, परम जोत, पुरखोत्तमो, पुरखां दा भी पुरख, पुरख ओतम, अकाल पुरख वाहिगुरु, जो तमाम नारियां नू पुरखां नू पैदा करन वाला पुरख है, ओ परम जोत पुरख ओतमो जांके रेख ना रूप, जिसकी कोई शकल नहीं नजर आती, जिसका कोई रूप रेख रंग आकार नहीं है। कहिंदे जांके रेख ना रूप, ओ इस शरीर रूपी सरोवर दे विच। सो हुण सारे इस पंक्ति नूं दास तों बाद अद्धे दे हिस्से च बोलियो, ताकि असीं अज ए नुक्ता लैके जाइए कि कमाल दी गल है।

नौजवान कहने लगा, मेरे नाल ऐसी बीती कि मर्दा मर्दा मैं बच के आ गई। मैं आख्या ये मर्दा मर्दा बच के आए, वेखी किधरे बचदा बचदा ना मर जाए। जदों सिख सोचन लग पैंदा मैं हुण बचना है, ते गुरु दे सिक्खी नूं तलांजली देनी शुरू कर दिंदा, गुरु नूं पिठ देनी शुरू कर दिंदा। ते मैं क्या वेखी किधरे बचदा बचदा ना मर जाए। गुरु कलगीधर दे सन्मुख रवी, गुरु तो बिना किसे कम नहीं आउणा। भाई गुरदास सिंह जी कहंदे